टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छा अहिले दिउँसो को एक बजे सिबम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

0: हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: नब्बे एक साल चौदह चौरानब्बे चौरासी।
1: समुदाय का लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: वाला बेला छँदै पाइँदैन उत्पादन लाई माला
1: कृपा नमो सुनु कवि आइ माला